0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রে বা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাঁদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। এখন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে সরফিরোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातः काल कैकई का आदेश पाकर सुमंत श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथे पन्ने अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाए। अवधरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

0: त्रीणि एकम् इति अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभाग

0: आपके साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान

0: को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित

0: करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: CNTA is committed.
2: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh

मीडियम वीव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 9:10 और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा लेकर।

तो आकाशवाणी के प्रिय कार्यक्रम रसधारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ पापिया और अगले कुछ मिनटों तक हम साथ रहेंगे एक ऐसे विषय के साथ जो हमारे जीवन के से तो जुड़ा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। विषय है जल संरक्षण और मरुस्थल। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन सुबह उठकर नल खोले और उसमें पानी ही ना हो तो क्या होगा? शायद उस दिन हमें एहसास हो कि जिस पानी को हम रोजमर्रा की चीज समझकर अनदेखा कर देते हैं वो वास्तव में कितना अनमोल है। पानी केवल हमारी प्यास बुझाने के लिए नहीं है, हमारी फसलें, हमारे जंगल, हमारे पशु पक्षी, हमारा पूरा जीवन पानी पर ही निर्भर करता है।

बात हो रही थी दोस्तों एक ऐसे दिन की जब एक दिन सुबह उठकर नल खोले और उसमें देखे कि पानी ही ना हो तो क्या होगा। शायद उस दिन हमें एहसास हो कि जिस पानी को हम रोजमर्रा की चीज समझकर अनदेखा कर देते हैं वो वास्तव में कितना अनमोल है। पानी केवल हमारी प्यास बुझाने के लिए नहीं, हमारी फसलें, हमारे जंगल, हमारे पशु पक्षी, हमारा पूरा जीवन पानी पर ही निर्भर है। और दिलचस्प बात क्या है पता है? दिलचस्प बात यह है कि धरती का बड़ा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यही कारण है कि दुनिया भर में जल संरक्षण की चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। और जब हम पानी की बात करते हैं तो मरुस्थल का जिक्र अपने आप आ ही जाता है, क्योंकि शायद दुनिया में पानी का मूल्य सबसे अधिक वही लोग समझते हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं। फिलहाल समय एक और खूबसूरत गीत का सुनते हैं और फिर लौटेंगे वापस और बातचीत के साथ।

दोस्तों, ये गाना सुनने के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पानी और इंसान का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना सभ्यता का इतिहास। दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। नदी जहां भी बहती थी वहां जीवन बसता था, खेत लहलहाते, व्यापार होता और सांस्कृतिक विकसित होती थी। लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हमने पानी को इतना सहज मान लिया कि उसकी अहमियत कहीं पीछे छूटती जा रही है। घरों में टपकते नल, बेवजह बहता पानी, सड़कों पर पानी की बर्बादी, ये सब छोटी बातें लगती है, लेकिन जब करोड़ों लोग ऐसा करते हैं तो उसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। कहते हैं कि भविष्य के संग का संघर्ष पानी को लेकर हो सकता है। ये बात सुनने में भले ही अतिशयोक्ति लगे, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी पहले से ही गंभीर समस्या बन चुकी है। फिलहाल चलिए बातें होती रहेंगी, पर पढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं हमारा अगला गाना।

दोस्तों, जब हम मरुस्थल का नाम लेते हैं तो हमारे मन में दूर दूर तक फैली रेत, तेज धूप और ऊंटों की तस्वीर उभरती है। लेकिन मरुस्थल केवल रेत का समुद्र तो नहीं, ये प्रकृति का एक अनोखा संसार है।

जो हमें संघर्ष और संतुलन का पाठ पढ़ाता है। भारत का थार मरुस्थल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले रेगिस्तानों में गिना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग सदियों से पानी की हर बूंद को संभालना जानते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे पारंपरिक तरीके विकसित किए जिनसे वर्षा का पानी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। बावड़िया, कुएं, तालाब और जोहर जैसी व्यवस्था

दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि जल संरक्षण केवल बड़े बड़े अभियानों से ही संभव है, लेकिन सच ये है कि इसकी शुरुआत घर से ही होती है। यदि हम ब्रश करते समय नल बंद रखें, आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करें, टपकते नलों की मरम्मत कराएं और वर्षा जल संचयन को अपनाएं, तो हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। याद रखिए, पानी बचाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। जिस तरह एक एक बूंद मिलकर सागर बनाती है, उसी तरह एक एक व्यक्ति का प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकता है।

0: दोस्तों, बारिश का मौसम लगभग हर किसी को पसंद होता है। पहली बारिश की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक और ठंडी हवाएं मन को आनंद से भर देती है। लेकिन बारिश केवल आनंद का विषय नहीं, ये प्रकृति का सबसे बड़ा जल भंडारण अभियान भी है। दुर्भाग्य से हमारे शहरों में बारिश का बहुत सा पानी नालियों के रास्ते बहकर निकल जाता है। यदि इस पानी को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित किया जाए तो भूजल स्तर को बढ़ाने में बड़ी मदद मिल सकती है। आज देश के कई हिस्सों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले वर्षों में जल संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और इसी विचार के साथ चलिए सुनते हैं हमारा अगला गाना भी।
1: ओरे माझी

दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन शायद हम इस वाक्य को इतना सुन चुके हैं कि उसके महत्व पर ध्यान ही नहीं देते। सोचिए, हमारी सुबह की पहली चाय से लेकर रात के आखिरी गिलास पानी तक, दिन का शायद ही कोई ऐसा पल हो जो पानी से जुड़ा ना हो। पानी केवल हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारी सभ्यता का भी अभिन्न हिस्सा है। भारत में नदियों को केवल जलधारा नहीं माना गया, उन्हें माँ का दर्जा दिया गया। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी।

कावेरी। इन नदियों के किनारे केवल शहर नहीं बसे बल्कि भावनाएं और आस्थाएं भी विकसित हुई। लेकिन समय के साथ बढ़ती आबादी, शहरीकरण और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग ने जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा दिया। इसलिए आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है कि हम पानी को केवल संसाधन नहीं बल्कि धरोहर के रूप में देखें।

दोस्तों, आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौतियों का सामना कर रही है, तब पानी का महत्व और भी बढ़ गया है। कहीं बाढ़ की स्थिति बनती है तो कहीं सूखे का। मौसम का ये बदलता रूप हमें संकेत दे रहा है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। पेड़ लगाना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना, वर्षा जल को सहेजना और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना, ये केवल पर्यावरणीय कार्य नहीं बल्कि भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। और इसी जिम्मेदारी को याद रखते हुए चलिए सुनते हैं आगे हमारा अगला गीत।

दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि पक्षियों और जानवरों के लिए भी पानी कितना महत्वपूर्ण है? गर्मियों में कई बार छोटे छोटे पक्षी केवल एक कटोरी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। ऐसे में यदि हम अपने घर की बालकनी, छत या आंगन में पानी का एक छोटा सा पात्र रख दें, तो एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जल संरक्षण केवल मनुष्यों के लिए नहीं, ये पूरे परिस्थिति तंत्र के लिए काफी आवश्यक है। धरती पर रहने वाला हर जीव किसी न किसी रूप में पानी पर पूरी तरह से निर्भर भी है।

दोस्तों, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। आज की इस बातचीत में हमने जाना कि पानी जीवन का आधार है और मरुस्थल हमें उसकी कीमत समझाता है। हमें ये समझना होगा कि जल संरक्षण को एक दिन का अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। जब भी हम एक बूंद पानी बचाते हैं तो हम केवल पानी नहीं बचाते बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा भी करते हैं। उम्मीद है आज की ये छोटी सी बातचीत आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद पानी बचाने की दिशा में एक छोटा सा कदम उठाने की प्रेरणा भी देगी। इसी आशा के साथ मैं फिलहाल आपसे लेती हूँ विदा। अपना और अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान जरूर रखिए। अब रजधारा के बाद सीधे मिलेंगे सुरभि के साथ ठीक दोपहर के 12 बजे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ही हुई मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1000 किलोहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और

0: वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Prime Minister Narendra Modi has called on all the nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Evian, France,

স্বামী নাদাব আকাশবাণী কলকাতা কি উর্দু পেশকশ আঞ্জুমান মে আপকা খৈর মকদম হ্যাঁ सुबह के 10:15 और 57 सेकेंड हो रहे हैं और आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर चैनल संचैता। बातें कुछ वो जो आप सुनना चाहते हैं, कुछ वो जिन्हें हम सुनाना चाहते हैं, तो बन जाइए हम सफर, थामिए हाथ अपने मेजबान सरफराज का। पैंतालीस मिनटों के सफर में लाए हैं संजीदा मौजूआत और

जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। भाई पीछे क्यों, आपने हम कदम हो के चलना है, साथ चलना है, क्योंकि यही तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। इश्क में इन्हीं सूरतों में जो है वो कामयाबी मिलती है, जब एक हाथ पकड़ के और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चला जाए। कहते हैं दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। अहले दिल इसको दिल नहीं कहते, जो तड़पता ना हो किसी के लिए। दोस्तों अभी तड़पने और तड़पाने की बात फिर कभी, फ़िलहाल आप सुने ये खूबसूरत सा नगमा, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। आवाज़ है लता मंगेशकर की, नगमा निगार हैं आनंद बख्शी और मौसीकार हैं कल्याण जी।

ये समा समा है ये प्यार का। जी हाँ दोस्तों, प्यार के लिए वैसे कोई वक्त और कोई पाबंदी नहीं है, आप जिस वक्त चाहें प्यार करें। दोस्तों एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्यार से मुराद सिर्फ आशिकी वाली नहीं है, प्यार आप अपने वालदैन से भी कर सकते हैं, घर में छोटे बच्चों से कर सकते हैं, अपने बड़ों से कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं प्यार में शामिल होती हैं। इसलिए इसके लिए ना तो वक्त की ज़रूरत है और ना उम्र की कैद है, आप जहाँ चाहें जैसे चाहें प्यार कर सकते हैं। कहते हैं कि दिल ही खो बैठे दिल लगी कैसी, दिल ही खो बैठे दिल लगी कैसी, तुमसे बिछड़े तो ज़िंदगी कैसी। पर दोस्तों बिछड़ने और मिलने की बात अपनी जगह है। फिलहाल सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में जो जीता वही सिकंदर फिल्म के इस नगमे को मौसीकी दी है जतिन ललित ने और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी।

तेरे मेरे सपने अब एक ही रंग हैं। दोस्तों, सपने एक रंग तभी होंगे जब खुलूस हो और जज्बा हो, वरना खुदा खैर करे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं और एक खूबसूरत सा नगमा। 10:41 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता की उर्दू पेशकश अंजुमन चैनल संचयता पर अपने मेज़बान सरफराज के साथ। और इसी सिलसिले को और मज़ीद बढ़ाते हुए आइए आप सुनवाते हैं एक और खूबसूरत नगमा। लेकिन इससे पहले एक खूबसूरत सा शेर आपके नज़र करना चाहूँगा। ले लिया दिल ये दिल लगी क्या है, ले लिया दिल ये दिल लगी क्या है, तुम रुलाते हो ये हंसी क्या है। इश्क बादे फना भी मिट ना सका, इश्क बादे फना भी मिट ना सका, मौत क्या शय है जिंदगी क्या है। दोस्तों, अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में आरजू फिल्म का ये नगमा। हसन जयपुरी के बोल हैं और मौसीकार हैं शंकर जय किशन।

जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि तमन्ना दो दिलों की एक सी मालूम होती है, तमन्ना दो दिलों की एक सी मालूम होती है, अब इनकी हर खुशी अपनी खुशी मालूम होती है। दोस्तों प्यार में यही तो एक मज़ा है, अपना अंदाज है, क्योंकि जहाँ आपको महबूब की खुशी का एहसास होता है वहीं उसकी परेशानियों का भी आपको यकीनी तौर पर गम होता है। कहते हैं ये दिल लगी भी क़यामत की दिल लगी होगी, ये दिल लगी भी क़यामत की दिल लगी होगी, खुदा के सामने जब मेरी आप की होगी। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में 10:48 हो रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, आराधना फिल्म का। मौसीकार हैं SD बर्मन और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में 10:51 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता की उर्दू पेशकश अंजुमन चैनल संचयता पर सरफराज के साथ। और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, आकाशवाणी कोलकाता की खसूसी पेशकश ख्वातीन की ख्वाहिशें। मज़ेसामीन, ख्वाहिशें ऐसी शय हैं जो किसी को मुतहरक रहने में मदद करता है। ये ज़िंदगी के हर दौर में हमारे दिलों में जन्म लेती है। जैसे

0: जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी आरजुएं और तमन्नाएं भी तब्दीली आती रहती हैं। बचपन में चांद तारों को पाने की ख्वाहिश, जबकि नौजवानी में रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश। स्कूली तालीम के दौर से ही कुछ बनने की तमन्ना अंगड़ाई लेने लगती है और जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बारी आती है तो इसमें गज़ब की तेज़ी आती है। आकाशवाणी कोलकाता की आज की ये पेशकश ख्वातीन की ख्वाहिशें, आर्कियोलॉजिस्ट बनने की चाहत, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस प्रोग्राम में आज हम एक ऐसी खातून की रुदात से आपको आशना कराएंगे जो तमाम कोशिशों के बावजूद आर्कियोलॉजिस्ट बनने में नाकाम रही। आइए सुनते हैं इन्हीं की जबानी इनका नाम।
1: मेरा नाम सिंह है और मैं कोलकाता के मानिक तल्ला में रहती हूँ। कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ नहीं ले जाती जहाँ हम जाना चाहते थे, बल्कि वहाँ पहुँचा देती है जहाँ हालात हमें ढकेल देते हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ सपने ऐसे होते हैं जो उम्र भर चुपचाप सांस लेती है। मेरे दिल में भी एक ऐसा ही सपना था, आर्कियोलॉजिस्ट बनने का सपना। जब लोग बचपन में डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने की बात करते थे, तब मुझे इतिहास की किताबों के पन्नों में छिपी कहानियाँ आकर्षित करती थी। किसी पुराने किले की टूटी हुई दीवार, किसी मंदिर की घिस चुकी मूर्ति या किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष, ये सब मेरे लिए सिर्फ पत्थर नहीं थे, बल्कि हजारों साल पुरानी जिंदगियों की आवाज थे। मैं सोचती थी कि अगर मैं आर्कियोलॉजिस्ट बन पाती तो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर खुदाई करती, मिट्टी की परतों के नीचे छिपे इतिहास को खोजती। शायद किसी दिन मेरे हाथों में कोई ऐसा अवशेष आता जो सदियों से धरती के भीतर सोया हुआ था। मैं उन जगहों पर जाती जहाँ कभी महान सभ्यताएं बसी थी। मैं ये जानने की कोशिश करती कि हमारे पूर्वज कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे घर बनाते थे, कैसे त्यौहार मनाते थे। मैं सिर्फ पत्थर नहीं खोजती, मैं इंसानों की भूली हुई कहानियाँ खोजती, क्योंकि आर्कियोलॉजी सिर्फ अतीत को जानने का विषय नहीं है, ये अपनी पहचान को समझने का माध्यम भी है।
0: दोस्तों, जिस शख्स को जिस शगल का ज़ौक हो और वो इसमें बेतकल्लुफ उम्र बसर करे, इसे ऐश कहते हैं। अमृता सिंह भी मनपसंद पेशा अख्तियार करने में नाकाम रहीं, लेकिन इन्होंने आज जिस मकाम को हासिल किया है उसमें वो यकीनी तौर पर गालिब की ज़बानी ऐश कर रही हैं। लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अमृता से इसके ख्वाब छीन लिए, लेकिन इसने वो हौसला नहीं छोड़ा जिसकी ज़रूरत है। इन्होंने नए हौसले की ऐसी उड़ान भरी जिसने आज इन्हें रुतबा फराहम किया। इस बारे में वो क्या कहती हैं, सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी।
1: सपना पूरा हो जाए, ज़िंदगी इतनी आसान भी तो नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पढ़ाई के दौरान कई बार आर्थिक परिस्थितियां रास्ते में खड़ी हो गई। कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी थी जिन्हें टाला नहीं जा सकता था। घर की ज़रूरतें थी, परिवार की कुछ उम्मीदें थी और समय की अपनी अलग ही मजबूरियाँ थी। कई बार इंसान अपने सपनों से नहीं हारता, बल्कि परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। मेरे साथ भी शायद यही हुआ। जिस समय मुझे अपने सपने के पीछे भागना चाहिए था, उस समय मुझे ये सोचना पड़ा कि घर कैसे चलेगा, भविष्य कैसे सुरक्षित होगा और जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी करूँगी। धीरे धीरे रास्ता बदल गया और मैं उस पेशे में आ गई जिसके बारे में मैंने कभी बचपन में सोचा भी नहीं था। शायद नौकरी की ज़रूरत थी, शायद आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता थी और शायद परिवार के लिए कुछ निर्णय लेने पड़े। आज मैं जो भी काम करती हूँ पूरी ईमानदारी से करती हूँ, क्योंकि हर काम का अपना सम्मान होता है। लेकिन सच कहूँ, जब भी किसी प्राचीन मंदिर की मैं तस्वीर देखती हूँ, जब भी किसी पुरातात्विक खोज की खबर पढ़ती हूँ, जब भी किसी पुराने किले की दीवारों को मैं छूती हूँ, तब दिल के किसी एक कोने से आवाज आती है, काश मैं भी एक आर्कियोलॉजिस्ट बन पाती। लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि सपने सिर्फ पूरे होने के लिए नहीं होते, कुछ सपने हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए भी होते हैं। और आर्कियोलॉजी ने मुझे यही सिखाया है कि अतीत का सम्मान करना कितना जरूरी है।
0: लोगों का कहना है कि ज़िंदगी में ख्वाहिशों का दायरा जितना वसी होगा बेइत्मीनानी इस कदर बढ़ेगी, जबकि दूसरे मकतब फ़िक्र वालों का कहना है कि ज़िंदगी महज ज़रूरतों को पूरा करने का नाम नहीं, ख्वाहिशात और ख्वाब ज़िंदगी के इस बेरंग खाके में रंग भरने का काम करते हैं। अमृता का ख्वाब गर्चे पूरा ना हो सका, ताहम इन्होंने बड़े तजर्बे ज़रूर हासिल किए जिनकी रोशनी

0: में इनके सोचने का अंदाज बदल गया। आइए सुनते हैं इस ताल्लुक से वो क्या नजरिया रखती हैं।
1: बहुत से लोग सोचते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट का काम सिर्फ खुदाई करना होता है, लेकिन असलियत इससे कहीं बड़ी है। एक आर्कियोलॉजिस्ट देश के इतिहास का रक्षक होता है। वो उन धरोहरों को बचाता है जिन्हें समय धीरे धीरे मिटा रहा होता है। अगर आर्कियोलॉजिस्ट ना हो तो शायद हमारी कई सभ्यताओं की कहानियां हमेशा के लिए खो जाए। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन मंदिरों, पुराने किलों, बौद्ध तूपों और ऐतिहासिक नगरों के बारे में जानते हैं, क्योंकि किसी न किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने वर्षों की मेहनत से उन तथ्यों को खोजा और संरक्षित किया। वे धूप में काम करते हैं, बारिश में भी काम करते हैं, दूर दराज के इलाकों में महीनों भर रहते हैं। कभी कभी एक छोटी सी खोज के लिए वर्षों तक इंतजार करना भी पड़ता है। लेकिन जब मिट्टी के नीचे से इतिहास की कोई नई कहानी निकलती है ना, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं होती, वो पूरे देश की उपलब्धि होती है। क्योंकि जो राष्ट्र अपने इतिहास को समझता है, वही अपने भविष्य को मजबूत बना सकता है। और अब मैं देश के उन बच्चों से कुछ कहना चाहती हूँ जो शायद आज ये सुन रहे हो और उनके दिल में भी आर्कियोलॉजिस्ट बनने का सपना हो।
0: संजीदा जहन की मालिक अमृता सिंह में किसी की मदद करने का जज्बा कूद कूद कर भरा है। वो क्या कीमती मशवरे दे रही हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं ये ही कहना चाहूंगी कि अगर तुम्हें पुराने किले अच्छे लगते हैं, अगर इतिहास की कहानियां तुम्हें रोमांचित करती है, अगर तुम्हें ये जानने की उत्सुकता रहती है कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, तो अपने इस शौक को कभी छोटा मत समझना। खूब पढ़ो, इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो, संस्कृति को समझो, म्यूजियम जाओ, पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानो, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सवाल पूछना मत छोड़ो, क्योंकि हर बड़ी खोज की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है। आज भारत में आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अवसर है। विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है, शोध के अवसर है, और देश को ऐसे युवाओं की भी जरूरत है जो अपनी विरासत को बचा सके। लेकिन सिर्फ डिग्री काफी नहीं होगी, धैर्य चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और मेहनत चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए अपने इतिहास के प्रति प्रेम, क्योंकि आर्कियोलॉजी नौकरी से पहले एक जुनून है। और यदि तुम्हारे भीतर ये जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जहां तक मेरी बात है, हो सकता है मैं आर्कियोलॉजिस्ट ना बन पाई, हो सकता है मेरे हाथों ने कभी किसी प्राचीन सभ्यता की खुदाई ना की हो सकता है मैंने वो रास्ता ना चुना हो जिसका सपना बचपन में देखा था। लेकिन आज भी जब मैं किसी ऐतिहासिक धरोहर के सामने खड़ी होती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा वो सपना कहीं गया ही नहीं है, वो अब भी
0: किसी के साथ अपने दोस्त सरफराज से
1: शायद पेशा बदल गया लेकिन प्यार नहीं बदला।
2: This is Akashvani Kolkata Sanchit, the channel broadcasting on 297.6 meters in medium wave corresponding to 1008 kilohertz. Here's best music program for you, Starblind Iron Maiden coming up for you.

0: Don't forget to drink your milk.
1: Bryan Adams cuts like a knife.

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 12:01 और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी कार्यक्रम सुरभि। तो चलिए दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा है से। दोस्तों आज है 17 जून और आज का दिन विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है और संदेश देता है कि यदि हम आज अपनी धरती जल और वनस्पतियों की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मरुस्थलीकरण का अर्थ है उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे बंजर और अनुपयोगी हो जाना, अत्यधिक वृक्षों की कटाई, जल का अनियंत्रित दोहन, भूमि का अनुचित उपयोग और जलवायु परिवर्तन इसके प्रमुख कारण हैं। वहीं सूखा केवल पानी की कमी नहीं है बल्कि ये किसानों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। हम सभी जानते हैं कि जीवन का आधार जल और भूमि है। यदि भूमि उपजाऊ रहेगी तो अन्न पैदा होगा, पेड़ पौधे फलेंगे फूलेंगे और पर्यावरण संतुलित रहेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस हमें ये याद दिलाता है कि छोटी छोटी पहल भी बड़े बदलाव ला सकती है। एक पौधा लगाना, पानी की एक एक बूंद बचाना और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना धरती को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आइए आज हम सभी ये संकल्प ले कि अपनी धरती को हरा भरा बनाएं, जल का संरक्षण करें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक

स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण छोड़कर जाएं। तो दोस्तों ये थी चर्चा है और आगे बढ़ते हैं, चलिए किशोर कुमार की आवाज में सुन लेते हैं इनका गाना।

तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरभि में। और अब सुरभि में आगे बढ़ते हुए चलेंगे पहल की ओर। और पहल की ओर जब जाएंगे तो बात करेंगे आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, पहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जिसने भारत के किसानों को के खेतों तक

लिए पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। ये योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे संक्षेप में PMKSY कहा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी करोड़ों लोग की आजीविका खेती पर निर्भर करती है, लेकिन खेती की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? उपजाऊ मिट्टी, मेहनती किसान और सबसे महत्वपूर्ण पानी। यदि समय पर पानी न मिले तो किसान की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। यही कारण है कि सिंचाई को कृषि की जीवन रेखा कहा जाता है। वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल। इस योजना का लक्ष्य केवल सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना ही नहीं, बल्कि पानी के बेहतर और वैज्ञानिक उपयोग को भी बढ़ावा देना है। हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश तो होती है, लेकिन उसका पानी संरक्षित नहीं हो पाता। दूसरी ओर कई इलाकों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती, परिणाम स्वरूप किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इन चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास करती है। इस योजना के तहत नहरों का विकास, जलाशयों की कमी, तालाबों का पुनर्जीवन, चेक डैम बनाना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और भूजल संरक्षण जैसे अनेक कार्य किए जाते हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंच सके और किसान केवल मानसून पर निर्भर न रहे। योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जिसमें ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। इन तकनीकों की मदद से कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव होती है। पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। कल्पना कीजिए, यदि एक किसान पहले एक एकड़ खेत की सिंचाई के लिए हजारों लीटर पानी खर्च करता था और अब वही काम कम पानी में हो जाए, तो इससे न केवल पानी की बचत होगी बल्कि खेती की लागत भी घटेगी। यही इस योजना की सोच है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूक करती है। आज जब जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा जैसी समस्याएं सामने हैं, तब पानी की हर बूंद का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए ये योजना केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इस योजना का एक और लाभ है कि इससे खेती की उत्पादकता बढ़ती है। जब फसलों को समय पर पर्याप्त पानी मिलता है तो उसकी वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है और इससे किसानों की आय बढ़ने लगती है। देश के अनेक राज्यों में इस योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है। जिन क्षेत्रों में पहले पानी की कमी के कारण खेती मुश्किल थी, वहां अब नई संभावनाएं दिखाई देने लगी है। कई किसानों ने आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाकर अच्छी पैदावार प्राप्त की है। हालांकि केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, जल संरक्षण में आम नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हम वर्षा जल का संचयन करें, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और जल स्रोतों की को प्रदूषित होने से बचाएं, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमें ये संदेश देती है कि विकास का रास्ता संसाधनों की समझदारीपूर्ण उपयोग से होकर जाता है। पानी एक अमूल्य संसाधन और इसकी रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। किसानों की समृद्धि, कृषि की उन्नति और जल संरक्षण के संकल्प के साथ ये योजना भारत के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल का ये मंत्र न केवल खेती को मजबूत बना रहा है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी सुदृढ़ करता है। इसी आशा के साथ कि हम सभी जल संरक्षण को अपनी आदत का हिस्सा बनाएंगे और कृषि के सतत विकास में योगदान देंगे, आज की पहल की प्रस्तुति यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 12:12 एग्जैक्टली, और आप सुन रहे थे पहल। पहल के अंदर आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। फिलहाल के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं कुछ फिल्मी गाने।

तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जाते जाते अब आखिरी गाने में हम पहुंच चुके हैं, जो है किशोर कुमार की आवाज़ में कितने भी तो कर ले सितम, सनम तेरी कसम से। तो सुन लेते हैं ये गाना और इस गाने के साथ ही मैं पापिया भी लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलूंगी किसी और दिन कुछ और समय कुछ और बात और गीतों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यूं ही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून

0: 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
2: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित, समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ

0: बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं।

0: गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए इज कमिटेड। एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
3: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी

0: আকাশবাণী কলকাতা সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হল। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:59 হয়ে 52 সেকেন্ড। এখন খবর দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा

0: से हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनेली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचरिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी पूनम के संग। उर्वशी के अंतर्गत दिव्या और दिव्या के अंतर्गत आज मैं बात करने वाली हूँ मैत्रेयी के बारे में। मैत्रेयी प्राचीन भारत की एक अत्यंत ज्ञानी और विदुषी महिला थीं, जिनका उल्लेख मुख्य रूप से

बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये महर्षि याज्ञवल्क्य पत्नी थी। और भी बातें हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं जतिन ललित, आवाजें अभिजीत और अलका याग्निक और फिल्म का नाम चलते चलते। और आज दिव्या के अंतर्गत मैं बातें कर रही हूं मैत्रेयी के बारे में। मैत्रेयी का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्ज है जिनकी रुचि सांसारिक सुखों से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में थी। इनका सबसे प्रसिद्ध प्रसंग तब आता है जब महर्षि याज्ञवल्क्य संन्यास लेने का निर्णय लेते हैं और अपनी संपत्ति अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी में बांटना चाहते हैं। तब महर्षि ने मैत्रेयी से पूछा कि क्या ये धन वो स्वीकार करेंगी, तो उन्होंने बहुत ही गहराई से प्रश्न किया, हे नाथ, यदि सारी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूं? आगे क्या हुआ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत नगमा आप सब तक पहुंचाऊंगी। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथियों ही बने रहिए।

गीतकार हैं प्रशून जोशी और संगीतकार हैं जतिन ललित। आवाजें अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो और फिल्म का नाम हम तुम।

5:34 और आज उर्वशी के अंतर्गत दिव्या और दिव्या के अंतर्गत मैत्रेयी। और थोड़ी देर पहले मैंने मैत्रेयी के प्रश्न के बारे में बताया था। प्रश्न था, हे नाथ, यदि सारी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ? तब महर्षि ने उत्तर दिया कि धन से अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो मैत्रेयी ने वह संपत्ति लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा, मैं वह क्यों लूं जिससे मुझे अमरत्व प्राप्त ना हो? आप मुझे वही ज्ञान दें जिससे मुझे आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त हो सके। बातें और भी हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए।

अलका याग्निक और कुमार शानू की खूबसूरत आवाज में फिल्म सोल्जर से महफिल में बार बार। फिलहाल मैं बात कर रही थी मैत्रेयी के बारे में। मैत्रेयी ने जब महर्षि से क्या जब कहा कि मैं वह क्यों लूं जिससे मुझे अमरत्व प्राप्त ना हो, आप मुझे वो ज्ञान दें जिससे मुझे आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त हो सके। ये संवाद मैत्रेयी की उच्च बौद्धिक क्षमता और वैराग्य को दर्शाता है। वो केवल एक गृहिणी नहीं बल्कि एक दार्शनिक थी जिन्होंने भौतिकवाद की सीमाओं को पहचान कर सत्य की खोज को प्राथमिकता दी।

मैत्रेयी का जीवन आज भी हमें ये सिखाता है कि वास्तविक जीवन इन बाहरी सुखों को और चकाचौंध में नहीं, बल्कि वास्तविक सुख और शांति स्वयं को जानने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में है। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति और ज्ञान पिपाशा की एक जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। फिलहाल 5:47 और वक्त है एक और खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

0: 5:51 और थोड़ी देर के लिए दीजिए पूनम को आज्ञा, लौट कर फिर आऊंगी और आप सबके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम हिंदी वार्ता। वक्त होगा 6:10, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।
1: Every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you.

0: Techno City, not 24 Parganas, informs that Tohid Lashkar, aged about 13 years, medium built, height 4 feet 5 inches, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 2nd September 2021. Shri Shudip Dhara from Hatiyara, Poshim Para, Eco Park, North 24 Parganas, informs that Pradeep Dhara, aged about 51 years, medium built, height 5 feet 5 inches, color skin dark, mother tongue Bengali, is missing since 18th May 2026 from Kakurgachi Auto Stand. Shri Tapos Dash from Dakshin Kashiabad, Dholhat, South 24 Parganas, informs that Trisha Dash, aged about 14 years, normal built, height 4 feet 6 inches, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 11th March 2026. Special Superintendent of Police, Missing Persons Bureau, CID, West Bengal Police, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 27, informs that Sri Shubir Kumar Sinha, aged about 75 years, medium built, height 5 feet 8 inches, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 29th May 2026 from 6x16 Chittaranjan Colony, Jadavpur, South 24 Parganas. Morjina Parveen, aged about 17 years, normal built, height 4 feet 10 inches, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 6th March 2026 from Basantpur, Aushgram, East Badhaman. Information regarding all the lost persons may be intimated to the officer in charge, Missing Persons Bureau, CID, West Bengal Police, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 27, or Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lal Bazar, Kolkata 1. Let's take a look at the programs of our evening transmission. At 6:10 p.m., Hindi program Varta. At 6:30, off-tube commentary in Hindi and English of ICC Women's T20 cricket match to be played between India and Netherlands. This match will be broadcast on transmitter only. From 6:30 onwards, our program will be heard only on NewsOn AIR app, where at 6:30 we have Hindi program Gul Gulshan. Bengali modern songs by Aditya Mukhopadhyay will be aired at 7:10 p.m. Those were the programs of our evening transmission, and that is the end of our.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न

0: में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi today addressed a crucial working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 summit in Avion, France. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
1: In his address at the session, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. He also proposed connectivity projects linking Africa, Latin America, and the Pacific Island countries. He also suggested the creation of international mobilization partnership for accelerating connectivity and trade, in which G7 capital, India's talent, and Global South's ownership could be combined. During the session, Mr. Modi also highlighted that tangible growth leads to inclusion and well-being of the people and spoke about India's growth story underpinned by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
2: The high-level session was attended by G7 member nations, partner countries and key representatives from the International Monetary Fund and the OECD. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. This meeting brought together G7 member countries, partner nations and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership, with the successful visit of Mr. Merz to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Mr. Meyers invited the Prime Minister for the 8th

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी वार्ता पूनम के संग, और आज इसके अंतर्गत मैं बात करने वाली हूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अंतर्गत आता है, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी, भारत सरकार ने करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया। ये केवल एक राहत योजना नहीं, बल्कि वैश्विक संकट के समय भारत की संवेदनशीलता और सामर्थ्य का प्रतीक बनी। मार्च 2020 में जब भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई, तब सबसे बड़ी चुनौती गरीब, श्रमिक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन लोगों के सामने आई जिनका दैनिक रोजगार अचानक रुक गया था। भोजन, स्वास्थ्य और आर्थिक असुरक्षा के इस दौर में सरकार का प्राथमिक दायित्व उन लोगों तक पहुंचना था जो सबसे अधिक प्रभावित थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को इसी तत्कालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त प्रदान किया गया। इसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी नागरिक भूखा न सोए। जनधन खातों के माध्यम से महिला लाभार्थियों के खातों में सीधे नगद सहायता भेजी गई। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्तें जारी की गईं। कोरोना योद्धाओं जैसे कि डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया गया। ईपीएफओ अंशदान में सरकार द्वारा भागीदारी की गई, जिससे छोटे उद्यमों और उनके कर्मचारियों को राहत मिली। गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ प्रदान किया गया, ताकि घर की रसोई का चूल्हा बंद ना हो। इस योजना की सबसे बड़ी सफलता इसके कार्यान्वयन में छिपी है। भारत ने डिजिटल इंडिया और जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया कि सहायता का पैसा बिचौलियों के बिना सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। पारदर्शी तरीके से डेटा का उपयोग और आधार आधारित पहचान ने भ्रष्टाचार की संभावनाओं को शून्य कर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने न केवल तत्कालीन राहत दी लोगों को, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव भी डाले। भारत में व्यापक पैमाने पर भूख की समस्या को रोकने में सफलता मिली। इसके अलावा रिपोर्टों के अनुसार इस योजना ने अत्यधिक गरीबी को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असंगठित क्षेत्र के लोगों के हाथों में नगद पहुंचे, इसके लिए भी कई कार्य किए गए और नगद पहुंचने से बाजार में न्यूनतम मांग बनी रही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत की कल्याणकारी नीतियों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसने ये सिद्ध किया कि एक बड़े लोकतंत्र में भी तकनीक और मानवीय संवेदनाओं के मेल से सबसे कठिन समय का सामना किया जा सकता है। यह योजना आज भी समय समय पर परिष्कृत होकर गरीब वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त माध्यम बनी हुई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक सामाजिक कल्याण योजना है। इसे मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, श्रमिकों और गरीबों को संकट के समय सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। योजना का प्राथमिक उद्देश्य समाज के उन लोगों की मदद करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और किसी भी आपातकालीन स्थिति जैसे महामारी या आर्थिक मंदी में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इनका लक्ष्य गरीबों के लिए भोजन, स्वास्थ्य और आय की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि मैं इसके मुख्य घटकों की बात करूं

0: तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस योजना का सबसे प्रमुख और चर्चित हिस्सा है। इसके अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अतिरिक्त 5 किलो अनाज गेहूं या चावल मुफ्त प्रदान करती है। इसका उद्देश्य देश में जीरो हंगर के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके अलावा DBT यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सरकार ने जनधन खातों के माध्यम से महिला लाभार्थियों के खातों में सीधे नगद राशि हस्तांतरित की, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा। मनरेगा में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी की दरों में वृद्धि की गई, जिससे ग्रामीण श्रमिकों को आर्थिक सहायता मिली। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने उनके PF खाते में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान देने की जिम्मेदारी उठाई, जिससे उनके वेतन का पूरा हिस्सा उन्हें मिल सके। गरीब परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर प्रदान किए गए, ताकि वे ईंधन की कमी से जूझने की बजाय अपनी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों जैसे कि डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता के लिए बीमा कवर प्रदान किया गया, ताकि महामारी जैसी स्थितियों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह योजना ये दिखाती है कि कैसे सरकार तकनीक और प्रभावी नीतियों के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती है। आज के समय में भी यह योजना निरंतर संशोधित और विकसित हो रही है, ताकि देश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी सहायता का लाभ पहुंच सके। फिलहाल थोड़ी देर के लिए दीजिए आज्ञा, लौटकर फिर आऊंगी, आप सबके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम गुलगुलशन। वक्त होगा 6:30, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। G7 इत्यस्य नेतारः वैश्विक स्थिरतां सुरक्षा सहकारं बहुराष्ट्रीय संघटित अपराधस्य प्रतिकार प्रयत्नांच केन्द्रीयमानाः घोषणानां श्रृंखलाः स्वीकृतवन्तः। फ्रांस देशस्य इवियान नगरे G7 इति शिखर सम्मेलनेन समं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह मेलनं करिष्यति। सः फ्रांस देशस्य भ्रमणं भागत्वेन अद्य सायंकाले पेरिस नगरं प्राप्स्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः भारतस्य सार्वभौमता निर्विवाद्यमिति कथयन् आतंकवादं विरुध्य सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर इत्येतानि च निर्णायकानि कार्याणि इति उदघोषयत्। भारतस्य रक्षोत्पादनं निवर्तमान वित्तीय वर्षे 0.78 लक्षं कोटि रूप्यकाणि अभिलेख्यं यावत् वर्धितं, 21-22 वर्षात् 10.1% वर्धितमस्ति। विद्रोह प्रतिरोध कार्याणि अभिलक्ष्य रक्षाबलानि सम्पूर्णे मणिपुरे सजगाः सक्रियाश्च सन्ति। 3 आतंकवादिनः गृहीताः, 26 अवैध अन्तः भूमियानि गुहास्थानानि नष्टानि। अपि च क्रीडावार्तासु, पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान देशयोर्मध्ये त्रिक्रीडा श्रृंखलायाः द्वितीया एकदिवसीया क्रीडा लखनऊ नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुल गुलशन पूनम के संग। फिलहाल आप हमारा ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप पर। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए अगले 7 बजे तक।

गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित। आवाजें कुमार शानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति, और फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। अगला नगमा जो कि है एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल, आप सब तक पहुंचाए देती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए।

जगजीत सिंह और आशा भोसले की खूबसूरत आवाज में फिल्म आपको पहले भी कहीं देखा है से ये खूबसूरत सी गजल आपने सुनी। फिलहाल एक और खूबसूरत नगमा फटाफट आप सब तक पहुंचाई देती हूं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत आवाज में।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत आवाज में फिल्म विरासत से आपने ये खूबसूरत सा नगमा सुना। फिलहाल सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए।

6:57 और थोड़ी देर के लिए दीजिए पूनम को आगे लौट कर फिर आऊंगी आप सबके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम दर्पण। वक्त होगा 7:30। तब तक के लिए आ गया नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजना का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। श्री मोदी ने सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित कार्य सत्र में भी भाग लिया। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ट्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसी बीच श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी सभी की नजरें हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ

0: दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडपम के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेटबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेटबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इधर लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today addressed a crucial working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 summit in Evian, France. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
0: In his address at the session, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. He also proposed connectivity projects linking Africa, Latin America, and the Pacific Island countries. He also suggested the creation of international mobilization partnership for accelerating connectivity and trade, in which G7 capital, India's talent, and Global South's ownership could be combined. During the session, Mr. Modi also highlighted that tangible growth leads to inclusion and well-being of the people. And spoke about India's growth story underpinned by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
2: The high-level session was attended by G7 member nations, partner countries and key representatives from the International Monetary Fund and the OECD. Prime Minister Narendra Modi held a crucial bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz on the sidelines of the G7 summit. In a social media post, the Prime Minister informed that both the leaders discussed ways to further cement bilateral cooperation by working together in trade, investments, circular economy, defence, IT and more. Prime Minister Modi also held a bilateral meeting with European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen on the sidelines of the G7 summit. The leaders reaffirmed their shared commitment to promoting a resilient multipolar global order that supports peace, stability, prosperity and sustainable development. However, all eyes are firmly set on the Prime Minister's highly anticipated bilateral meeting with US President Donald Trump, scheduled for this evening. They are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Indian Railways has approved the doubling of the 49-kilometer Adipur-Bhuj section in Gujarat at a cost of 493 crore rupees to enhance capacity and strengthen rail strengthen rail connectivity in Kutch region. It has also approved a project worth 405 crore rupees to modernize the signaling project on Eastern Railway, involving the replacement of relay-based interlocking systems

0: मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण पूनम के संग। आप ये कार्यक्रम इस समय हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुन पा रहे हैं। दर्पण के अंतर्गत एक नजर और एक नजर के अंतर्गत मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस। यह दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भूमि के क्षरण, उपजाऊ मिट्टी के मरुस्थल में बदलने और सूखे की समस्या के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। आज के समय में जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप के कारण भूमि की उर्वरता तेजी से कम हो रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर भी संकट गहरा हो रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपजाऊ भूमि को बचाना और जल संरक्षण करना कितना आवश्यक है। सतत विकास और पर्यावरण संतुलन के माध्यम से ही हम बंजर होती धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। एक नजर के अंतर्गत फिलहाल इतना ही।
1: तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

गीतकार हैं जयदीप साहनी और संगीतकार हैं विशाल और शिखर, आवाजें कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान, और फिल्म का नाम सलाम नमस्ते। 7:42 फिलहाल वक्त है राही मतवाले का, जिसके अंतर्गत आज मैं बात करने वाली हूं ग्वालियर के बारे में। इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर अपने गौरवशाली इतिहास, भव्य किलों और स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ग्वालियर का मुख्य आकर्षण यहाँ का विशाल किला है, जिसे किलों का रत्न कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ जयविलास पैलेस, गुजरी महल, तेली का मंदिर और तानसेन का मकबरा देखने लायक प्रमुख स्थान है। ग्वालियर अपनी संगीत परंपरा के लिए भी जाना जाता है, जो महान संगीतकार तानसेन की कर्मभूमि रही है। ग्वालियर घूमने का सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। इस दौरान मौसम बहुत ही सुहाना और ठंडा रहता है, जिससे दिन में ऐतिहासिक स्थलों को घूमना और फोटोग्राफी करना काफी आरामदायक हो जाता है। गर्मियों के महीने जैसे कि अप्रैल से जून में यहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है, इसलिए

ये उस दौरान यात्रा से बचना चाहिए। यदि आप संस्कृति, संगीत और इतिहास के प्रेमी हैं तो ग्वालियर आपकी यात्रा सूची में अवश्य शामिल होना चाहिए। राही मतवाले के अंतर्गत फिलहाल इतना ही।

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत आवाज में फिल्म खूबसूरत से आपने ये खूबसूरत सा नगमा सुना। फिलहाल 7:54 और आवाज दो हमको फिल्म दुश्मन से, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: subject was Yoga for Wellness, Wisdom and World Peace on International Day of Yoga. Today's guest was Kriti Agarwal, yoga practitioner and teacher. Interviewed by Shormishtha Raha. This program is edited by Shuranjan Das. This is an Akashvani Kolkata presentation.
1: That was our English magazine program, Horizon. Stay tuned for our next program to be relayed from Delhi.
2: Namaskar. Akashvani se samachar sandhya ke saath main Vishal Sharma. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
3: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
2: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया।

0: है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आईटी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से

0: सज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
4: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन

0: में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France, on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
2: Excellency, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ।
1: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed Promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all at the ongoing G7 summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting brought together G7 member countries, partner nations and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. On the margins of the G7 summit in Evian, Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz today exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership with the successful visit of Mr. Maersk to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हों, युद्धपोत हों या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी हैं। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कलपुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
3: मैं कहूंगा कि

कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना। तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रेडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना। ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इसे बनाया है। ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।

0: प्रतिशत से भी ज्यादा। और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 43,000 ऑड क्रोर, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 क्रोर है। प्राइवेट प्रोडक्शन, यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 क्रोर में प्राइवेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट द सेम एज व्हाट वाज द टोटल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 2014।
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इसे 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास है, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे मुल्क है जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, इंपोर्टर अभी हम रहेंगे 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हम इंपोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ, कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
0: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के, DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद फैक्ट्रीज बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है, 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट टू मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, L&T हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 1,78,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, विच इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो, और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो, तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर 1। नंबर 2, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने Mark 1 बनाया है, आपने हमने ही बनाया

0: हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाई स्पेयर उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, आईआईटीज है, वहां के बच्चे बड़े होशियार हैं, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स हैं वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और भारत के अंदर ये अपने हम दिया, जैसे आप कह रहे हैं, वी आर द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कहीं एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी। ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टिल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा हो 2 साल हो गए, 2 इंजन नहीं आ पाए, 2 साल हो गए। क्यों? हमने उनके भरोसा, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो फैक्ट्री में बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इस तरह के अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर एमसीआई प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब 4 गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इंपोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इंपोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है आईएनएस विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंतर, उसके 3 आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इंपोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है। तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी UAV बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है, उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 3 कंपनियों को, 3 कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की 2 श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, 8-10 साल हमें पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी, आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
0: ड्रोन वॉर पे अब समथिंग हम लोगों को

0: यकीनन उसके साथ अडाप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करते, मैं ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इस तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें जरूर, चाहे स्टार्टअप के पास आपके पास चाहे नेविगेशनल लॉजिस्टिक हो या उसके सीकर हो या उसके पास फोटोग्राफिक देते, बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा, ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है, आत्मनिर्भरता भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है, और वो उस बात का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशन है, तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसमें रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडैप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए UAVs को मद्देनजर रखते हुए न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चाहे स्पेस है नेविगेशनल है जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिल करके अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, जो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है ये हम भारत के अंदर बनाए, और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
2: इसके कई सारे आंसर, पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी, और सबसे बड़ी बात अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे, जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा, मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी जब आप ग्रो करेंगे, तो जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज टास्क, तो आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए, और वो ट्रेंड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI हैं वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है। कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है।

0: रिवेट भी, जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं। बड़ा हाईली स्किल जॉब है, और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल जॉब होगा वो। जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया। साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पे इंपैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इंपैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
2: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है। अगर नंबर वन GDP वाला अगर $22 trillion का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 trillion का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 trillion की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है यह हमारा देश है और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए। लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है भिंभिना गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आज देखिएगा कौन सा है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, फटाफट कौन से जनरेशन है 1 2 3 4 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इम्पोर्ट किया 4.5 generation, 5th 6th generation स्टिल। तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब आप भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया, इसको किस तरह जो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने UAV है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स है, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं विश्व में जाकर के, सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक US के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है। जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब ट्रेंड वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मुकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मुकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
0: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स द शिप, जमीन से सामने के युद्धपोत पे मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मेनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाई अप है USSR यानी

0: सोवियत रशिया के साथ और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाई अप है विमान बनाने के लिए इंजन बनाने के लिए को प्रोडक्शन के लिए टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए इंजन की हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की उसके इंजन लगे हुए 20 साल से इंजन यहीं इंडिया में बनते हैं रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई है उसकी कुछ इंपोर्ट होता है कुछ यहाँ बनता है कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए। हमने बहुत अच्छा काम किया 178,000 करोड़ पे आ गए मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए। 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है कोई टीचर नहीं है वहाँ कि आपने ये बनाना देयर इज नो टीचर। आपने खुद ही गलती करनी है गिर के फिर सीखना है और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा कोई नहीं बताएगा कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को इसमें वेपन कैसे लगेंगे वेपन फायर कैसे होंगे रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो ये कोई सिखाएगा नहीं कोई देयर इज नो टीचर। आप खुद ही टीचर हो तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे 20 साल लगे लगते हैं इतने जी बिल्कुल लगते हैं। तेजस को 33 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं। परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं इतने। हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं वो एक बहुत विकसित मुल्क है हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो एक तो नो क्रिटिसिज्म दूसरा R&D वेरी स्ट्रांग R&D अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम। नो शॉर्टकट्स जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है। नो शॉर्टकट्स बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हैं अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा। नो शॉर्टकट्स R&D बहुत स्ट्रांग ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
2: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आले दर्जे का बनाना है। अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बनाया है हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर अगले 5 साल के अंदर एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी अभी अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं हमारे पास कैपिटल है हमारे पास इच्छा है करने की काबिलियत है और हम करेंगे चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: কে ব্যাট করতে পাঠায় নিউ শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরেকবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি G7 শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে নৌ চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার উপর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে অরুণ কুমার। মুখ্য সমাচার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन के अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई की निंदा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमईओ में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने तीन महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। भारत ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का समर्थन किया। G7 देशों ने लिथियम, निकल और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए एक नए G7 संगठन की गठबंधन की स्थापना की भी घोषणा की। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनाम्ट ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच चौथी साइबर वार्ता आज नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें दोनों पक्षों ने साइबर खतरों के बदलते परिदृश्य, राष्ट्रीय रणनीतियों और नीतियों, डेटा संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध और कानून प्रवर्तन पर विचार विमर्श किया। कल शुरू हुई इस वार्ता की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में साइबर कूटनीति के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय में साइबर मामलों के राजदूत अंसर्ट नूरमैन ने की। बैठक के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इन मुद्दों पर हुए नवीनतम घटनाक्रमों, जिनमें साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और AI गवर्नेंस

0: कॉन्फ्रेंस शामिल हैं के सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर चर्चा की। बैठक में साइबर मामलों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहलों पर निरंतर सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी प्रभावी हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी प्रशासकों की हिंसक कार्रवाई की निंदा की है। खबरों के अनुसार इस महीने की 8 से 16 तारीख के बीच हुई इस कार्रवाई में 32 से अधिक नागरिक मारे गए। एक रिपोर्ट।
1: मानवाधिकार संस्था ने कहा कि इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से बंद कर दिए गए। इसके अतिरिक्त संघीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया और 100 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मानवाधिकार संस्था ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। साथ ही पाकिस्तानी प्रशासकों से इस हिंसक कार्रवाई को तुरंत रोकने का आह्वान किया है। घटना के स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने को भी कहा गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेटेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेटेबेलो जहाज में हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह के अंत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के हिजबुल्ला पर सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाई में जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते का प्रारूप जल्द ही जारी किया जाएगा। अमेरिका के टेक्सास के लॉरेडो में कल हुई एक विमान दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। विमान पर 6 लोग सवार थे। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह, पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। ये विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की ओर संकेत करता है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 17 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 114 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शैफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 45वें ओवर में 232 रन पर सिमट गई। कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज पुर्तगाल का सामना DR कांगो से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन के अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तान

0: Midweek Classical. This program was broadcast from the studios of Akashvani, Kolkata.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थ

0: व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एहमियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

এখন মজবুর ছবির গান শুনবেন লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে।